0: 자 통토크 디럽사피 드로바근 츠알라 드니 리완 덴자시 존니 사니티게 시중거 야슈고데 코롱거 푼든데 셈라존니 디라사피 드로피근 츠이틸라 달람 사바시시지에 드니 뉴슈 고용 봉고츠 바리
1: 나도 따종데 더 소진로 히도 측양통데 배차다시나 나든거 넘바 체도베 땡거 추근 토공라 다다거 언드거 시지 여부 야카고 언드거 따츠야부 드니 종시 따지저 언드거 수지고 토니 늘어요 대샤와티 드비엔 지멘데메 야부리 삼제 라과등이 수스다드 바가 서드히지 샤와티나 돌레사바 헤욘지엔 돌레티리시 다디우치 등이 소 디지안 몸부틴 샤오리
2: 인저 타야
1: 다티니 헨드제리 노노요 효웅드 두두가 그 차긴데티 코초고 반주 모뇽티가 코초 렘바옌데 그 고고코즈 토노 ते चोल ज्याचा नेहियो न साल ज्याचा नेहियो चो सोरे ज्याचा गाबजियो चो न्यार न्यार थापी पि लगा लरेमो ते ज्याचा समचिसिना तने ग न्यामदि हिले ग निसु ग सामु जक दोन्य निने चतों ग ते दादा ज्याखव ग चुन दुदु जों न तिग सुजि नो व ता तेल तर्पि तों गु सेहिरे ज छेमसों हुरा ज न्यामदि हुरा ता तेल तर्पि तों गु सेहिरे तने ग चुग सालों दे तेन सा दजियो chu so me na sa yu ren ha chi de ya ro de ting su so phe jian ro so mo bu den che nyam di hu la hian de so sa le yo sa le ren thong zu yu mo de ni la la ni di yu ma si so chong ke yo mo na on kun to so ma sa ma de ko so nye ya mo bu re on ko chu hyo cha de din ri hian nyam di hian de ge ni su ge de xia wa de zhe zhe mo
0: hai che che din ro le la de ni sani de ge mun chu ji ne chen ni ba ma shu ji ji lang bun chu ji xi ban ne le ka le la mu xi ka la he re de kong ki thon na par sim ta jin chu xi ni xia wa de zhe yu shi pai de lu ni xia xia sa tu xi bi ge lang bu de la jin lu yu la ga ji yong de yu jiong yu pai de ju chu ni ten lin pei ji tong jin ne pai la zhong wei ci sim ji la ji ti ti ge gen zhe xi jiong yin ba shi ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱨᱢᱞᱟ ᱢᱟᱠᱷᱟᱥᱤᱜᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱮᱡᱚ ᱵᱟᱛᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱥᱤᱜᱟ ᱭᱩ ᱨᱚᱢᱵᱷᱟᱭ ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱥᱩ ᱪᱮ ᱱᱤᱴᱷᱤᱱ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱜᱞᱟᱢᱞᱟ ᱡᱩᱡᱤᱭᱚ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱡᱮᱯᱤ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱭᱚᱝᱥᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱣᱤᱜᱟ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱ ᱞᱟᱥᱩᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱤᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱛᱚ ᱡᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱞᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱢᱤᱜᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱧᱮᱝᱜᱚ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱦᱤ
3: ᱛᱮᱭᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟᱝ ᱦᱚ ᱱᱚᱡᱤ ᱠᱚᱨᱩᱝ ᱠᱤ ᱜᱚᱡᱚ ᱥᱮᱨ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱦᱚ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱪᱷᱤ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤᱵᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱵᱮᱜᱭᱚ ᱞᱟᱨᱮ
4: ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱨ ᱨᱮᱥᱪᱤ ᱥᱚᱪᱤ ᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱫᱟ ᱪᱷᱤ ᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱚᱣᱟᱠ ᱠᱚᱨ ᱞᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱯᱤᱥᱮᱠ ᱛᱚᱢᱚᱭᱟᱢ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱠᱚᱞᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱚᱥᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱜᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱜᱤᱱᱫᱟ ᱞᱟᱭᱟᱱ ᱵᱟᱜᱪᱩᱜ ᱢᱟᱝᱟᱥ ᱡᱚᱜᱭᱚᱱ ᱱᱟᱨᱜᱮᱥ ᱛᱟᱯᱪᱤᱥᱛᱟᱝ ᱩᱫᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱠᱨᱜᱮᱪᱤ ᱪᱤᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱠᱚᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱪᱤ ᱥᱚᱝᱥᱪᱩᱵ ᱭᱮᱪᱩᱜ ᱠᱨᱜᱤᱱᱫᱟ ᱦᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱭ ᱭᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱜᱟᱪᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱜᱟᱪᱤ ᱭᱚᱱ ᱜᱟᱦᱤᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱭᱤᱱᱫᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱪᱚ ᱫᱚᱞᱟᱜ ᱛᱚᱨᱞᱚᱜ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱢᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱟᱞᱮᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱧᱤᱞᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱥᱚᱱᱥ ᱛᱚ ᱵᱨᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱣᱟᱨᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱟᱠᱟᱠ ᱛᱚ ᱦᱩᱛ ᱛᱟ ᱜᱩᱡᱩ ᱨᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱣᱟᱱᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱫ ᱜᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱨᱡᱜ ᱥᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱦᱱᱤ ᱨᱟᱛᱟᱢ ᱦᱮᱥᱟ ᱢᱮᱥᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱷᱤᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱭᱚᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱦᱱᱤ ᱠᱟᱢᱵᱱᱟ ᱦᱮᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜ ᱱᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟ ᱤᱠᱟ ᱟᱨᱟᱝᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱢ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱥᱟ ᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱢ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱱᱮᱠᱟ ᱱᱤᱢᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱩᱝᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱦᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚᱞᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱯᱷᱤᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟᱜ ᱡᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱚᱡᱩᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱭᱚᱱ ᱨᱮᱢᱪᱤᱨᱮᱢ ᱵᱟᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱯᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ si kola ndaga trinin zina chukka ta kanshtar si kola ga trinin zina chukka chi maam thayam ta ranga maayam kola nda dukunda la chik semkriz gi ina hachanga dhignu dhaga tsutamu riyasi kanshtar chu haran kuri che suni kori gita samtaz gin matwani bagchuk ziyo na thabji Тийм дээд төвшрэн корин нэ араник артангаад гэдэг юм. Юнг юм.
0: Дэрэв сапрандра бэцу шингэн нэ мана хачиг мэсэпэ мана кима жанли дибажиг жони тэ лене тод шава худм нэ лене тэнсу шишо падо ngachen de ni bepa shen khe choma la gwen de ji yi gon de ji bi ge mana de ne de ring ge ja tin di chin ji mi sa le chin no de gu de ji bi ge de ra sa bi na jun ben de ba ge nyam no de ba shi de ring ge zan jun chui le chin no de gu de ji bi ja tin di chin ji mi sa le chin ji no de choma ji sa so nga chu tin ji mi le chin no ja yo choma di chin la cha shi